0: और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलामे की बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा न करते, तो उनको और जो कुछ ही इफ्तराह करते हैं उसे छोड़ दो।
1: إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون।
0: और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल उनकी बातों पर मायल हों और वो उन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे।
1: أفغير الله أبتغي حكما وهو

और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए कि उनमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर है।

और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये चारपाई और खेती मना है, उसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज चारपाए ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर जिबाह करते वक्त खुदा का नाम नहीं लेते। सब खुदा पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा।

0: और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है।
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين

कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि खुदा ने ये चीजें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं।

0: कहो कि लोगों आओ, मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को खुदा का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना बल्कि सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिज्क देते हैं और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा उनके पास न फटकना और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को खुदा ने हराम कर दिया है कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी जिनका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो।
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف

कहो क्या मैं खुदा के सिवा और परवरदिगार तलाश करूं, और वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा।

लोगों अपने परवरदिगार से आजजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता।

0: उन्होंने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ।
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون।
0: तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर खाही करता हूं, और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो।
1: अवाजिब

और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं।

वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले ही खुदा की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ।

हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं।

तो उनसे इसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और इसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं।

0: और हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ।
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। इसी गजवे के ताल्लुक से सूरह अनफाल नाजिल हुई, जो दर हकीकत इस गजवे पर एक खुदाई तबसरा है। अगर ये ताबीर सही हो और ये तबसरा बादशाहों और कमांडरों वगैरह के फातिहाना तबसरों से बिल्कुल ही जुदा गाना है। इस तबसरे की चंद बातें मुख्तसरन ये हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की नज़र उन कोताहियों और इखलाकी कमजोरियों की तरफ मबजूल कराई जो उनकी फिल जुमला बाकी रह गई थी और जिनमें से बाज का इजहार इस मौके पर हो गया था। इस तवज्जो दहानी का मकसूद ये था कि मुसलमान अपने आप को इन कमजोरियों से पाक साफ करके कामिल तरीन बन जाएं। इसके बाद इस फतह में अल्लाह ताला की जो ताईद और गैबी मदद शामिल थी उसका जिक्र फरमाया। इसका मकसूद ये था कि मुसलमान अपनी शुजात और बसालत के फरेब में ना आ जाएं, जिसके नतीजे में मिजाज और तबा पर गुरूर और तकबर का तसल्लुत हो जाता है। बिल्कुल वो अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और उसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में रहें। फिर उन बुलंद अगराज और मकासद का तस्करा किया गया जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूरेज मार्के में कदम रखा था और इसी जमन में इन इखलाको साफ की निशानदेही की गई जो मार्कों में फतह का सबब बनते हैं। फिर मुशरिकीन और मुनाफिकीन को और यहूद और जंगी कैदियों को मुखातिब करके फसीह और बलीग नसीहत फरमाई गई ताकि वो हक के सामने झुक जाएं और उसके पाबंद बन जाएं। उसके बाद मुसलमानों को माल गनीमत के मामले में मुखातिब करते हुए उन्हें इस मसले के तमाम बुनियादी कवायद उसूल समझाए और बताए गए हैं। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को जंगो सुलह के जिन कवानीन की जरूरत थी उनकी तौज़ीह और मशरूयत है ताकि मुसलमानों की जंग और अहले जाहिलियत की जंग में इम्तियाज कायम हो जाए और इखलाक किरदार के मैदान में मुसलमानों को बढ़तरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम महज एक नजरिया नहीं है बल्कि वो जिन उसूलों और जाब्तों का दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों को अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के कवानीन की कई दफात बयान की गई है जिनसे वाजे होता है इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमानों और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फर्क है। 6 हिजरी में रमजान का रोजा और सदका फितर फर्ज किया गया और जकात के मुख्तलिफ निसाबों की तफसीलन तायुन किया गया। सदका फितर की फर्जियत और जकात के निसाब की तायुन से इस बोझ और मुशक्कत में बड़ी कमी आ गई जिससे फुकरा मुहाजरीन की एक बड़ी तादाद दो चार थी क्योंकि वो तलबे रिजक के लिए जमीन में दौड़ धूप के इम्कानात से महरूम थे। फिर नहायत नफीस मौका और खुशगवार इत्तफाक ये था कि मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में पहली ईद जो मनाई वो शवाल 6 की ईद थी जो जंगे बदर की फतेह मुबीन के बाद पेश आई। कितनी खुशगवार थी ये ईद सईद जिसकी सआदत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सर पर फतह और इज्जत का ताज रखने के बाद अता फरमाई और कितना ईमान अफरोज था इस नमाज ईद का मंजर जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकलकर तकबीर और तौहीद और तमहीद और तस्बीह की आवाजें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर अदा किया था। उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमानों के दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों और उसकी की हुई ताईद के सबब उसकी रहमत और रिजवान के शौक से लबरेज और उसकी तरफ रगबत के जज्बात से मामूर थे और उनकी पेशानियां उसके शुक्र की अदायगी के लिए झुकी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस नेमत का जिक्र इस आयत में फरमाया है और याद करो जब तुम थोड़े थे जमीन में कमजोर बना कर रखे गए थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, बस उसने तुम्हें ठिकाना रहमत फरमाया और अपनी मदद के जरिए तुम्हारी ताईद की और तुम्हें पाकीजा चीजों से रोजी दी ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। बदर के वाके के बाद जंगी सरगर्मियां। बदर का मार्का मुसलमानों और मुशरिकीन का सबसे पहला मुसल्लह टकराव और फैसला कुन मार्का था जिसमें मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हुई और सारे अरब ने इसका मुशाहिदा किया। इस मार्के के नताइज से सबसे ज्यादा वही लोग दिल गिरफ्ता थे जिन्हें बराह रास्त ये नुकसान अजीम बर्दाश्त करना पड़ा था, यानी मुशरिकीन। یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکا سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دنوں گروہوں کے ہمراز اور مساز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے، انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی کل کو اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، سیسا کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہو، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چار دیواریوں تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہیں اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ ہم ان تمام منصوبوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग जाग जाग पाकिस्तान, जाग जाग।
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

0: खास तौर पे, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट अप्रूवल्स लेने होते हैं. वी हैव टू वेट कि अब हमें इस चीज़ का अप्रूवल मिलेगा तो हम ये करेंगे. देन इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस जिसकी वजह से आप जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं. बट एक्चुअली रिसर्च आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही है, जो अदर सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं, वो आपकी डीमोटिवेशन का जो है वो कॉज बन रहे होते हैं. तो इसलिए आपको लगता है कि
1: आपसे बात करके पता चल रहा है कि रिसर्च आपके दिल के कितने करीब है. चले हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या है और आपने कैसे सिलेक्ट किया कि मैं इसी एरिया में काम करने वाली हूँ और इसी में एक्सेल करना है.
0: वेल, इनिशियली जब मैंने अपना एमफिल का थीसिस किया था तो आई वॉज इन टू इस्लामोफोबिया. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड और मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो भी वुमेन मुस्लिम को जो है वो किस तरह से अमेरिकन प्रिंट मीडिया में या वर्ल्ड मीडिया जो है वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इसके ऊपर मैंने काम किया. देन जब मैं PhD में आई, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है वो ट्रेंड्स आपके जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है एंड ऑलरेडी इसके ऊपर इन एरियाज पे इतना ज़्यादा काम हो चुका हुआ था. देन आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग के बाद, कोई ऑलमोस्ट 8 to 10 एरियाज पढ़ने उनको लिखने के बाद रिजेक्ट हो के देन आई केम इनटू मीडिया एंड साइकोलॉजी. तो बेसिकली अभी आजकल जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजी को लेकर या वेलबींग को लेकर जो है वो मैं अपनी पब्लिकेशंस या स्टूडेंट्स के जो थीसिस हैं वो इस पर काम कर रही हूँ.
1: सो आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है सामईन. हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि मिस्टर जफ़ का रिसर्च एरिया और उसमें इंटरेस्ट और एक अच्छा रिसर्चर कैसे बने.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर सद अफजार हैं, और उनसे भी हम डिस्कस कर रहे थे उनका एरिया ऑफ रिसर्च। और आप बता रही थी कि मीडिया और साइकोलॉजी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। तो मीडिया और साइकोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें, हम जो कॉन्टेंट देख रहे हैं, जो आज रील्स हम देखते हैं, जो भी ट्रेंड है, जो पोस्ट है, हर चीज़ के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जितना रिलेट करते हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है? इसको करते हुए आपको ये फील नहीं होता कि अब मैं इस पर्सपेक्टिव और अप्रोच से लिख रही हूँ, अब इस पर्सपेक्टिव अप्रोच को भी सोचना है, इस ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए, मैं इतनी सारी चीजों को कैसे समराइज करूंगी? कभी ये ख्याल आता है या जस्ट क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है आप बस रेंडमली जो ख्याल है उसको लिख देती है?
1: एक्चुअली इस तरह से है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो विद इन अ डे जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया तक कन्फाइन कर लेंगे तो आपकी जो लर्निंग है और आपका जो एक्सपर्टीज है आपकी वो एक ही एरिया तक फिर लिमिटेड हो जाएंगी, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मीडिया एंड साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म एंड उसके अंदर जो है वो बहुत सारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। जैसे आपने खुद बात की कि हम उसमें रील्स देख सकते हैं, हम उसमें अगर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की ही बात करें तो उसमें पॉजिटिव भी आते हैं, उसमें नेगेटिव भी आते हैं, उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है। फिर अगर हम उसको रिलेट करना शुरू करें फिजिकल हेल्थ के साथ तो जैसे इंसोमनिया है, स्लीपलेसनेस है, आपकी आइसोलेशन है, ये सारी
0: चीज़ें,
1: यस वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो एक ही ब्रॉडर जो एरिया है मीडिया एंड साइकोलॉजी उसके अंदर फॉल कर रहा है। और अगर देखा जाए तो जो हमारी सोशल साइंसेज या मैस कॉम की रिसर्च है वो बिहेवियरल रिसर्च है। तो आप अगर मीडिया एंड साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हर एक न्यू रिसर्च में डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, आपको नई चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने का मौका मिल रहा है। तो रैंडमली नहीं होते लेकिन डेफिनेटली उनके पीछे रैंडम थॉट्स भी होती हैं। जो चीज़ पॉपुलर है, जैसे लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स इज़ पॉपुलर, कोरियन कंटेंट इज़ पॉपुलर, उस पर मैंने काम किया है, देन उसी तरह से जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की आपने बात की। सोशल मीडिया का एक मेजर रोल है जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यंगस्टर्स को, हर तरह के एजेस के लोगों में जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है,
0: स्पेसिफिकली डिजिटल नेटिव्स
1: बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली नॉट सोशल मीडिया, अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, हम सारा दिन मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे काम करते हैं, हम कनेक्टेड हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं लेकिन हम फिजिकली डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो क्योंकि हम एक नॉर्मल पैटर्न से हट गए हैं तो उसका डेफिनेटली हमारे बिहेवियर्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो वो लर्न करना जो है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि यस, मैं अभी ये भी पढ़ना है, अभी मैंने ये भी देखना है, अभी मैंने ये भी देखना है।
0: और मैम जितनी ये वास्ट फील्ड है, जैसे सोशियोलॉजी से भी ये लिंक करती है कि सोसाइटी और सिस्टम क्या है, आप कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करते हो, तो मुझे लगता है आपने ऑल इन ऑल जो है ना हर चीज में एक्सपर्टीज ले ली है। एज अ रिसर्च एक्सपर्ट जब आपको बुलाया जाता है, आपके आपसे डिस्कशन की जाती है, तो तब ये फील होता है कि जो मैंने जितनी स्ट्रगल आज तक की है सम हाउ कहीं ना कहीं मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ।
1: मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 100% जस्टिफाई करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं या जो लोगों को लगता है कि मैं हूँ, मैं उसको एक मैक्सिमम लिमिट तक अचीव करने की कोशिश करूं और मैं अपना 100% जो है वो देने की कोशिश करती हूं, ताकि जो है मैं अपने आप को भी लेट डाउन ना करूं और जिन लोगों को मुझसे जो है वो एक्सपेक्टेशन है मैं उनको भी लेट डाउन ना करूं।
0: और मैम इसी के साथ अगर मैं ये पूछूं कि एक अच्छा रिसर्चर आपके ख्याल से कौन है, बिकॉज आप हाउस वाइफ भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देख रही होती हैं, उसके साथ साथ रिसर्च वर्क पर भी एक्सपर्टीज हैं, तो एक अच्छा रिसर्चर कैसे एक अच्छा रिसर्चर बनता है?
1: एक अच्छा रिसर्चर जो है वो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप अपने आप को स्टॉप कर देंगे और आप कहेंगे कि देयर इज़ नो अदर थिंग जिसको मैं लर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई जो मैं सीखना नहीं चाहता या मैं नहीं सीख सकता क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा नहीं होता। एक अच्छा रिसर्चर वो है जो कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, इन एवरी फील्ड. आप चाहे रिसर्चर नहीं भी हैं, इवन इफ़ यू आर अ टीचर, आप जो है अगर हाउसवाइफ भी हैं, तो हम कंटिन्यूस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं. जहां आप अपने आप को स्टॉप लगा देंगे, वहीं पे ही वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा. तो बीइंग अ रिसर्चर, मैं ये कहूँगी कि येस वी हैव और ओन चैलेंजेस, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. हमारे जो है वो बिल्कुल ऐसे फुल स्टॉप्स आ जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि इट इज़ अ डेड एंड और इसके बाद कुछ भी नहीं है. लेकिन अपने आप को मोटिवेट करें और नए सिरे से स्टार्ट करें एंड इसको कंटिन्यूसली लेकर चलें, अपने आप को इवॉल्व करें. विद एवरी रिसर्च आपको लगेगा कि आप खुद इवॉल्व हो रहे हैं.
0: और मैम, ये पढ़ाना कितना डिफिकल्ट होता है सर, सब्जेक्ट PhD के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, MPhil के स्टूडेंट्स को पढ़ाना?
1: वेल, आफ्टर माई एक्सपीरियंस विद बोथ BS, बल्कि बोथ तो नहीं मैं कहूँगी, BS में भी, MPhil में भी एंड PhD में भी, तो मुझे जो है वो स्कूल का टाइम याद आ जाता है जहाँ पे जो है वो टीचर्स आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के लिखना सिखाते हैं. तो मैं रिकमेंड करूँगी टीचर्स को कि जो रिसर्च पढ़ाते हैं वो बच्चों को ऐसे ही समझे कि वो स्कूल के बच्चों को कोई इस तरह की चीज़ सिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ी है. और वैसे भी एक टीचर को जो है वो अपनी एक्सपर्टीज को साइड पे रख के बच्चों के लेवल तक आके जब आप पढ़ाते हैं उनके टर्म्स में, उनकी लैंग्वेज में, उनके लेवल के एग्जांपल्स देके, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करते हैं.
0: कौन सी क्लास को पढ़ाना रिसर्च बहुत डिफिकल्ट रहता है, BS, MPhil या PhD?
1: PhD को?
0: Yes. क्यों?
1: BS लेवल के जो बच्चे होते हैं वो उसको सीरियसली ही नहीं ले रहे होते हैं. उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग बस यही होती है कि हमने ये कोर्स पढ़ना है और हमने इसको पास करना है क्योंकि हमने अपनी डिग्री पूरी करनी है. लेकिन एटलीस्ट वो लर्न करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए करते हैं. MPhil के लोग क्योंकि नए नए आए होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अब तो रिसर्च हमारे सर पर पढ़ ही गई है तो ये मुश्किल है,
0: तो
1: लेकिन यस, लेकिन एटलीस्ट वो करते हैं. जब आप PhD में जाते हैं तो मोस्टली उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी फील्ड के सर्टेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं. तो आपकी एक मेंटालिटी सेट हो चुकी होती है कि ये तो कोई चीज नहीं है और हम तो एक्सपर्ट्स हैं, हमें तो ये चीज आती है. तो उनको काउंटर करना, उनको सिखाना इस वेरी डिफिकल्ट.
0: अच्छा, एक और चीज बताएं, AI के टाइम पीरियड में जहाँ ChatGPT ने और डीप सीक ने इतनी असिस्टेंस कर दी है, एज अ रिसर्च टीचर एंड एज अ रिसर्चर कैसे पता चलता है ये प्लेजराइज्ड काम है?
1: जब आप कुछ सालों से टीचर, डेफिनेटली आपको भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी साल हो गए हैं, तो यू नो कि आपका जो स्टूडेंट है वो उसका पैटर्न क्या है, आपका राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो किस तरह की, वो कैबलरी उसका लेवल क्या है, या वो किस तरह के सेंटेंसेस लिखता है या लिखती है, उससे भी आपको पता चल जाता है. देन डेफिनेटली वी हैव सॉफ्टवेयर जहाँ से हम प्लेजरिज्म ईजिली चेक कर सकते हैं. AI भी हम चेक करते हैं, हम टर्निटिन यूज़ करते हैं, अब तो उसमें AI रिपोर्ट भी डेवलप होती है, प्लेजरिज्म भी होती है. लेकिन देन उसमें भी हमारे पास ऐसे AI असिस्टेंट्स हैं जो कि आपको रीफ्रेज भी कर देते हैं, पैराफ्रेज भी कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाता है कि इसमें जो एक खास तरह का पैटर्न है जो कि AI का है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो.
0: ऐसे होता है कि आप जब रिसर्च आर्टिकल से गो थ्रू कर रही होती हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो AI की बहुत हेल्प ले रहे हैं?
1: AI की हेल्प लेना बुरा नहीं है, डेफिनेटली उसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ की कमी या हर चीज़ की जाति जो है वो बुरी है, आप उसको यूज़ करें लेकिन उसमें अपना इंटेलेक्ट ज़रूर ऐड करें.
0: इसी के साथ लिसनर्स, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. आप सुन रहे हैं FM 92.6. मैं हूँ मरियम इरशाद, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर्क के साथ.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारी सबसे प्यारी और बहुत हर दिल अजीज डॉक्टर सदफ जहरा हमारे साथ हैं। और हम इन सभी बात कर रहे थे प्लेजरिज्म पे, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि रिसर्च और रिसर्चर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मैम मुझे ये बताएं कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सोशल साइंसेज में अभी क्या रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे हैं?
4: पब्लिकेशंस, उसमें भी आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जर्नल पब्लिकेशंस कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप बुक चैप्टर्स जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं, देन बुक चैप्टर्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, प्लस यू कैन बी अ रिव्यूअर फॉर एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल, जो बेसिकली एक रिसर्चर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
3: अच्छा मैम, इसी से मुझे याद आया कि हमारा जो UCP जर्नल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आप उसकी एडिटर भी हैं।
4: Yes.
3: तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया और कैसे इस इनिशिएटिव में आपने फुल ऑन अपनी एफर्ट दी हैं? बिकॉज मैं देखती हूँ आप बहुत मेहनत कर रही होती हैं, इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना, गो थ्रू करना, रिव्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना, सब एडिटर को देखना, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना, कैसे कर लेती हैं ये?
4: वेल मरियम, थैंक यू सो मच पहले तो इतनी अप्रिसिएशन के लिए, कि जब आपको अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है।
3: और आप आपको
4: मोटिवेशन भी मिलती है, थैंक यू सो मच, आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि आपने आगे जो है वो इससे अच्छा काम ही करना है। ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की जो है वो नीड ऑफ दी और है राइट नाउ। क्योंकि आप देखें कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, देयर वाज अ टाइम जब हमारे नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत दूर आपको लगते थे, यानी वो ऐसी चीज़ होती थी जिसमें आपको लगता था कि एक जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे टीचर्स जो होते थे वो भी नहीं पब्लिश उस तरह से करवा पाते थे। लेकिन अभी तो आप देखें विद दी इन्वेंशंस जो हमारे पास इनोवेशंस आ चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास ऑनलाइन जर्नल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्रिंट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो कोई भी एक रिसर्चर जिसको लगता है कि उसने काम किया वो पब्लिश करवा सकता है और करवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट और फैकल्टी में इसकी ज़रूरत इसलिए है कि डेफिनेटली हमारे बहुत सारे एकेडेमिया से रेलिवेंट जो टीचर्स हैं उसमें हमारी प्रमोशन का क्राइटेरिया भी पब्लिकेशन की बेसिस पे होता है, ये तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी अपनी भी ज़रूरत है। अब वो जो पब्लिकेशन है वो एक प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आएँ और अपने आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश करवाएं। उससे डिपार्टमेंट भी ग्रो करेगा, जो आपका स्कॉलर है, टीचर है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। हमने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी इन जुलाई 2022, एंड देन हमारे बोर्ड्स बने, हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा फर्स्ट इशू जो है वो पब्लिश हुआ था इन जून 2023, जो कि हमारा फर्स्ट इशू था। और अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्नल जो है वो वाई कैटेगरी में रिकॉग्नाइज्ड कर लिया HEC ने, एंड इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट, के मतलब हमारी मेहनत जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसका इतना फल दिया। एंड अभी जो है वो हमारा जर्नल, उसका जो Volume 3 है उसके Issue 1 के लिए हमने कॉल फॉर पेपर्स भी दिया हुआ है। तो इफ़ एनी स्टूडेंट और फैकल्टी मेम्बर और रिसर्च स्कॉलर इज़ इंटरेस्टेड, नॉट स्पेसिफिकली इन लाहौर, बल्कि अच्छी बात है जितने भी मीडिया के जहाँ जहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली, वो जो है वो हमें अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली उसका पूरा प्रोसेस है।
3: अच्छा मैम, इसका कोई क्राइटेरिया होता है जब आपको आर्टिकल भेजा जाता है, और कोई फ़ी है, कोई क्राइटेरिया है जिसको आप देखती हैं और उसके मुताबिक जो है रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है?
4: भाई हमारा जो जर्नल है वो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो है वो यूनिवर्सिटी बेसिस पे है, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, हम इसकी कोई पब्लिकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया जो है वो क्योंकि HEC से रिकॉग्नाइज्ड, और अगर आपका जर्नल HEC से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है तब भी उसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमें मीट करना होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय HEC। उसमें ये होता है कि एक स्कॉलर जो है वो आर्टिकल हमें सबमिट करवाता है, हमारा जर्नल का OGS है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसको जिसका लिंक है कि OGS www.ucp.edu.pk वहाँ पे जो है वो सिंपली एक ऑथर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद अपना आर्टिकल और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, की वर्ड्स हैं, जो को ऑथर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ करके वो सबमिट करवाता है। फिर उसके बाद जो है वो एडिटोरियल बोर्ड जो है वो उसका इनिशियली रिव्यू करते हैं। इनिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि वो जो आर्टिकल सबमिट हुआ है वो हमारे स्कोप के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी जो हमने अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उनको मीट कर रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग और जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है वो उसको मीट कर रहा है या नहीं, फॉल कर रहा है उसके अंदर। अगर तो वो उसके अंदर फॉल कर रहा है और हम अप्रूव करते हैं कि यस इसके अंदर जो है वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो फिर हम उसको फर्दर रिव्यू प्रोसेस में डालते हैं। अब HEC के अकॉर्डिंग जो है वो हम ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो मेक श्योर करते हैं, जिसमें ऑथर भी एनोनिमस होता है और रिव्यूअर्स भी एनोनिमस होते हैं, यानी बोथ साइड पे दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इफ़ देयर आर एनी मेजर रिविजन्स तो हम उसको वहीं पे ही रिविजन्स के लिए भेज देते हैं। देन जब उसमें रिविजन्स हो जाती हैं, अगर हमें रिव्यूअर ने कहा है, तो हम उसको रिव्यू के लिए जो है वो भेजते हैं। लेकिन अगर माइनर रिविजन्स हैं तो वो भी हम ऑथर से करवा के फिर देखते हैं कि उसके अंदर वो रिविजन्स जो है वो मेक श्योर हुई हैं या नहीं, एंड देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया है एंड नाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो फिर हम इसको फर्दर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन उसकी कॉपी एडिटिंग एंड प्रोडक्शन, उसमें जो है वो 1 से 2 माह लगते हैं, देन हम उसको एक्चुअली पब्लिश करते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड इन प्रिंट वर्जन।
3: और मैम ये जो पब्लिकेशन हो रही है ये फैकल्टी में से जो फैकल्टी पर्सन हैं, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की, ये भी पब्लिकेशन करवा सकते हैं या इनके अलावा कोई भी पब्लिकेशन करवा सकता है?
4: जो एडिटोरियल बोर्ड है आपके जर्नल का, जैसे लेट्स सपोज उसमें हम 6 मेंबर्स हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो पब्लिश नहीं करवा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर के जो एडिटोरियल बोर्ड है वो अपनी पब्लिकेशन उसमें ना कराए, और क्योंकि अपना जर्नल है वो खुद ही देख रहे हैं और खुद ही सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू HEC आपकी जो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके अपने इंस्टीट्यूट या अपने डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। तो हम ये करते हैं कि इफ़ देयर आर 5 आर्टिकल्स तो 4 हमारे जो है वो आउट ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं और 1 आर्टिकल हमारे अपने स्कॉलर्स में से होता है। एंड देन उसी तरह अगर 10 आर्टिकल्स हैं तो 8 बाहर से होंगे और 2 जो है वो हमारे अपने होंगे।
3: और मैम हर मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड मेथडोलॉजी, हर तरह का आर्टिकल इसमें होता है?
4: यस, बट उसका जो एनालिसिस पार्ट है बोथ फॉर क्वालिटेटिव एंड बोथ फॉर क्वांटिटेटिव, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं।
3: अच्छा, यानी इसकी एक सर्टेन तरह से इम्प्लीमेंटेशन यही है कि आपका रिव्यू जो होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हो।
4: yes.
3: और उसमें प्लेजराइज्ड काम ना हो।
4: yes.
3: और डेटा जो है, जो डेटा कलेक्शन हुई है या डेटा का एनालिसिस है वो अप टू द मार्क हो।
4: yes,
3: ऐसे ही है जैसे बाकी जर्नल्स के लिए आप भेज होते हैं, लेकिन इसमें कोई फी नहीं है।
4: yes,
3: इसमें कोई वॉन्ट टू पब्लिश तो आपका विदाउट फी जो है पब्लिश हो जाता है, तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम मीडिया और मास कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए। yes. कि वो अपनी पब्लिकेशंस करवाएं और एटलीस्ट वो इस चीज़ को नॉलेज भी रखते होंगे कि हमारा वाई कैटेगरी का रिकग्नाइज जर्नल है, तो इसमें पब्लिकेशन करवाने से उनकी ही रिसर्च का जो एक ग्राफ है वो ऊपर जाएगा।
4: यस, बिल्कुल ऊपर जाएगा। फॉर इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स एंड जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हमने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स और W में कराने होते हैं, दो देयर आर क्राइटेरियाज जो हमारी प्रमोशंस के लिए या अप्रेजल्स के लिए ज़रूरी हैं, बट आपने सर्टन क्वान्टिटी भी मीट करनी होती है तो आप वाई में भी करा सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आप अभी राइटिंग सीख रहे हैं, तो आप जो है वो एकेडमिक जर्नल्स में एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो पब्लिश करवाएं।
3: और मैम ये प्रोसेस कितना थका देने वाला होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं, मैं देखती हूँ यूजुअली आपका ऑफिस मेरे करीब ही है, तो मैं देखती हूँ कि आप सारा वक्त सिर्फ काम कर रही होती हैं, जब से आती हैं तब से, जब तक मैं जाती नहीं हूँ शायद आपके जाने तक, आप सिर्फ लैपटॉप पे चीज़ों को रिव्यू कर रही होती हैं। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, अब ये मीटिंग है, अब वो सेमिनार है, वो वर्कशॉप है, कैसे कर लेती हैं मैनेज, कैसे ये प्रोसेस थकाने वाला नहीं होता?
4: हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो है वो मशीनरी भी थक जाती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो इंसान भी थकना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने फिर वही मैं कहूँगी कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और आपको जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती रहती है। जैसे अभी आप की बात से ही मैं मोटिवेशन ले रही हूँ कि इफ आई हैव बिकम सर्टन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई कोलीग्स, तो ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं और ज्यादा अच्छा काम करूँ और मैं अपने आप को इस फील्ड में जो है वो और एक्सपर्ट बनाऊँ, ताकि मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स भी एज एन एग्जाम्पल मुझे सेट करें और वो इस फील्ड में आए और आगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं।
3: वैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं और वो आके बताते हैं कि डॉक्टर सदफ ज़ारा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये जो प्रोसेस है आपका रिसर्च का, ये प्रोसेस जो एज एन एडिटर है, ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से एज ए रिसर्चर और एज ए एडिटर काम करना?
4: जब मैं खुद रिसर्चर थी तो मैं खुद थक जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल जर्नल्स अभी भी जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे जर्नल्स हैं उनका जो पब्लिकेशन प्रोसेस है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 and 2 years टू पब्लिश, जिसमें आपको मल्टीपल रिविजन्स जो है वो करनी पड़ती हैं, एंड देन इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपका पेपर और आपका पेपर पब्लिश करेंगे। लेकिन जब मैं खुद इस प्रोसेस में पार्ट बनी हूँ, जब हमारा जर्नल स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज मैनेजिंग एडिटर, और क्योंकि मैं चीज़ें मैनेज कर रही थी और बेसिकली इसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट है यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं लोएस्ट से लेके मैक्सिमम तक जो है वो मैं मॉनिटर कर रही होती थी, मैं उस प्रोसेस का पार्ट बनी, तो मुझे पता चला कि येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स इतना टाइम लेते हैं, क्योंकि उनके पास सबमिशंस भी उसी तरह से आ रही होती हैं हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में, तो हर एक को जो है वो पूरे प्रोसेस से गुजारना और फिर उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करना, दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। और आप उनकी खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि यस उनके जो जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक कि HEC भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो इस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम भी जो है वो अपने जर्नल में इस क्वालिटी को मेंटेन करें और एक अच्छी एग्जांपल जो है वो सेट करें।
3: और मैम ये बताएंगे कि हमारी जो जर्नल की पब्लिकेशन है वो क्या क्वार्टरली है या मंथली है या किस रिलीवेंसी में?
4: इट इज़ बाई एनुअल, और हम साल में जो है वो दो दफ़ा पब्लिश करते हैं, एंड राइट नाउ अभी जो हमारा कमिंग है जो हमने जून में पब्लिश करना है Volume 3 का इशू नंबर 1, उसके लिए हमारा कॉल फॉर पेपर्स ओपन है, तो इंक्लूडिंग यू एंड अदर स्टूडेंट्स जो कि BS के या MPhil के या PhD के हैं या कोई भी मीडिया के फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम कि वो ज़रूर हमारे जर्नल में जो है वो अपनी पब्लिकेशन सबमिट कराएं, एंड देन हम ज़रूर देखेंगे उस प्रोसेस।
3: आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे, तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फैकल्टी आर, बहुत मज़ा आया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
4: थैंक यू सो मच मिस मरियम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी ढेर सारी तारीफें सुन के, और मैं खुद भी यहाँ से मोटिवेट होकर जा रही हूँ।
3: एक्चुअली ये तारीफें वैसे ही नहीं की गई, बिकॉज मैं देखती हूँ जब से मैं यहाँ एज इन फैकल्टी का पार्ट हूँ, मैंने देखा है हर फैकल्टी मेम्बर को, हमारी फैकल्टी इतनी बेस्ट और इतने अच्छे से सब काम करते हैं, तो हर किसी की कहीं ना कहीं पे जो इनपुट्स हैं एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना बनता है, और फैकल्टी आर का प्रोग्राम होता है इसलिए ताकि हम अचीवमेंट्स की बात करें, हम मीडिया के ट्रेंड्स की बात करें, हम स्किल्स की बात करें, हम ऐड और PR की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। सो इसी के साथ सामाइन आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम और एक नए अच्छे से गेस्ट के साथ आपके साथ होंगे। सुनते रहे FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, और आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर सदफ ज़ाहरा। मुश्किल में

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं परिंदों के लिए ठिकाना है सैलाब में रुकावट बनते हैं ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

0: अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया FM 92.6। मैं हूं आपका मेजबान आमिर यजदानी, प्रोग्राम सफर हिदायत के साथ हाजिर खिदमत। हमारे साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान डॉक्टर खालिद जहीर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: आप खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आज का मौजू डॉक्टर साहब मुआशरती मामलात पर है, स्पेशली निकाह और तलाक के मामलात पे। तो मैं इसका आगाज इस चीज से करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप ये हमें बताएं कि इस्लाम की रूह से या अल्लाह की रूह से जिसको कहना चाहिए, एक लड़का और लड़की अगर आपस में फैसला करते हैं इकट्ठा जिंदगी बसर करने के लिए और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो फैसला करते हैं, वो बालिग हैं, आकिल हैं, तो इसकी इजाजत इस्लाम देता है डॉक्टर साहब?
1: एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? यानी वो तो एक अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, लेकिन ये बात सही है कि फीलिंग तो वन साइडेड होती है। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी लड़के के अंदर दिल में किसी लड़की के बारे में ये फीलिंग पैदा हो, जज्बात पैदा हो कि वो उसको पसंद करता है, तो क्या उसको उससे शेयर करना चाहिए? और अगर फ़र्ज कीजिए कि लड़की भी उसको पसंद करती है तो क्या उसे वही बात बतानी चाहिए, और उसके बाद क्या मामलात होने चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। शायद जो नौजवान हमारे इससे पहले प्रोग्राम नहीं सुनते थे, पहली मरतबा अगर ये सुने तो फिर वो कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, या कम अज कम उनकी दिलचस्पी तो पैदा होगी।
0: है तो ये कुदरती बात है।
1: ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखें कुदरती बातों ही में बाज पहलू अखलाकी पैदा हो जाते हैं। मैं और आप और हम सब इंसान जानते हैं, जब हम ज़रा बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ने इंसान को जिस अंदाज जिस फितरत पे पैदा किया है, उसमें मर्द के लिए औरत की तरफ और औरत के लिए मर्द की तरफ एक मैलान, एक अट्रैक्शन, खिंचाव है। और ये भी हम जानते हैं कि अल्लाह की स्कीम में उसका मकसद ये है कि मर्द और औरत जायज़ तरीके से जब मिलें तो उस मैलान के नतीजे में वो अच्छी ज़िंदगी एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए गुजारें और उनके यहाँ औलाद हो। ये खुदा की स्कीम है, लेकिन अल्लाह की एक और स्कीम भी है कि दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है, तो इसलिए इंसान को उसके अंदर जायज़ और नाजायज़ दोनों तरफ मैलानात पैदा हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जाहिर है कि जिस लड़के के अंदर किसी लड़की में दिलचस्पी पैदा हुई तो वो लड़की उसकी बीवी तो नहीं है ना, वो चाहेगा कि उसकी वो बीवी बने, तो अब उसको ही नीड्स टू बी केयरफुल। मुझसे आप पूछें तो सच्ची बात है कि इस बात के इजहार करने में तो कोई बुराई नहीं है, मगर आगे क्या करते हैं? वो इजहार करे इस मकसद के लिए कि देखो मैं ये अपने अंदर जज्बात महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो फिर मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे वालिदैन के घर भेजूं। ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस पर तो कोई रोक टोक हो नहीं सकती। लेकिन अगर वो लड़का उसको ये बात कहे और लड़की कहे जी कि दिलचस्पी तो मुझे भी है, और फिर आगे के निकाह के मामलात के बारे में संजीदगी से गौर किए बगैर, प्लानिंग किए बगैर वो आपस में मिलना जुलना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में अभी ये खतरनाक बात है। ये नौजवान नहीं जानते कि इसके नतीजे में फिर वो शैतान को दावत देते हैं कि वो आए और उनके अंदर जो एक जज्बा, एक अट्रैक्शन मौजूद है उसको एक्सप्लॉइट करे और उनको बुराई की तरफ ले जाए। उसकी एक इब्तदा होती है,

0: उसमें एक दरमियान का रास्ता होता है और फिर उसमें एक इंतहा होती है आखिरी, हर एक से बचना चाहिए। सो दोनों के दरमियान दिलचस्पी पैदा हो रही है, ये जायज है नाजायज है, मैं कहता हूँ ये नेचुरल है, नाजायज नाजायज का सवाल ही नहीं है। आगे हम किस तरह से उसको डील करते हैं, ये है असल में वो मसला कि जो जायज नाजायज का है।
1: डॉक्टर साहब, मैं इसी तनाजुर में बात करूँ, मैं दूसरे तनाजुर में बात नहीं कर रहा, हमारा मौजू आज का है निकाह, तो उसका पहला स्टेप तो ये है कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करें तो क्या इस्लाम उसको किस तरह देखता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, हमारे यानी कि पाकिस्तान के जो लॉ में भी ऐसा है कि अगर यू नो अगर लड़का लड़की आपस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अकल हैं, बालिग हैं, और वो कोर्ट जाते हैं, डॉक्टर साहब कोर्ट इसको तस्लीम करता है, वो कोर्ट मैरिज होती है। देखें ये वो दूसरे पहलू हैं, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है बुनियादी इंसानी हक है, ये हकूक में से है, इसलिए कोर्ट उसको तस्लीम करती है। यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ।
0: अच्छा, मैं समझ गया। देखिए बात यह है कि कोर्ट में भी तो कोई इंसान बैठा है ना,
1: नहीं पर लॉ है ना डॉक्टर साहब, लॉ एंटरटेन करता है।
0: देखिए आपने मुझे इसलिए तो नहीं बुलाया कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूँ, मैं तो एक मौलवी आदमी हूँ, तो मैं तो आपको दीन की बात बताऊंगा। मुझे ये लॉ पसंद नहीं है। अगर मैं कोर्ट में बैठा होऊंगा बहसियत जज, तो मैं दोनों से पूछूंगा कि बेटे आप मेरे पास क्यों आए हैं, आपने वालदैन से बात नहीं की, बेटी आपने अपने घर वालों से बात नहीं की, यानी आप छुप छुपा के आके मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको एक लाइसेंस दे दूं कि आप एक मियां बीवी बन जाएं। तो बेटे ये जो शादी होगी इसके बाद तो आप एक माशरे का हिस्सा बनेंगे ना, ये शादी आपकी करेगी क्या, आपकी फैमिली को दूसरी फैमिलीज के अलावा एक और इजाफा करके उनके साथ रिलेट करेगी, तो वो दूसरी फैमिलीज कहाँ हैं। यानी ये ऐसे तो नहीं ना कि एक जजीरे में एक लड़का और लड़की अचानक कहीं पौधों की तरह पैदा हो गए और उनके दरमियान ताल्लुक हो गया। ये एक सोसाइटी है, उसमें खानदान है। हमारे हमको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने वालिदैन का कि उन्होंने एक दूसरे के साथ वफादारी करके हमें वो माहौल फराहम किया कि जिसकी वजह से हम अब इस काबिल हुए हैं कि दुनिया में रहते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि खुदा ना खास्ता वो बदचलन होते और यू नो एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करके गायब हो जाते तो बहुत मुश्किलात होती, बहुत तकालीफ होती, शायद हम जी ना सकते। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है कि निकाह एक लड़के और लड़की के दरमियान होता है और उनकी आपस में दिलचस्पी होनी चाहिए, ना लड़के को मजबूर करना चाहिए ना लड़की को मजबूर करना चाहिए। मैं इस बात में बिल्कुल वाजे हूँ कि जिस निकाह में किसी एक फरीक को मजबूर किया गया वो निकाह ठीक नहीं हुआ, उसको चैलेंज कर सकता है वो लड़का या वो लड़की जिसको मजबूर किया गया। लेकिन आप ये कहें कि वालिदैन को खबर भी ना हो और आप छुप छुपा के कर लें, तो फिर इसका मतलब ये है, मुझे आप इजाजत दीजिए कि आपका कोर्ट और आपके जजेस जिनाकारी का एक लाइसेंस फराहम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब मैं अगर गुजारिश करूँ, मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था, अगर मैं वाजे नहीं कर पाया, कि लड़का लड़की वालिदैन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं जनरली कि मुझे पसंद है, तो वालदैन लड़का या लड़की के वालदैन में से बहुत एक जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस के बाद मजबूर होकर वो कोर्ट पे जाते हैं, और इसी को एक बुनियादी हकूक मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि बगैर रजामंदी के निकाह चैलेंज हो सकता है, तो इधर तो ये दोनों राजी हैं और एक शराफत के सर्कल में वो करना चाह रहे हैं, माँ बाप नहीं मान रहे, और तो
0: इस प्रॉब्लम को मानता हूँ ठीक, मगर ये एक्सट्रीम केसेस में होना चाहिए। लड़के ने अपने वालिदैन को घर वालों को राजी करने की कोशिश की, नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक आध मरतबा बात की, नहीं हुए
1: ठीक है,
0: बार बार
1: ठीक है,
0: लड़की ने कोशिश की, नहीं हुए। जब मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि यार कोई भी नहीं हुआ, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, यार मामू भी नहीं हुए, चचा भी नहीं हुए, तो कोई ना कोई तो हुआ है ना, एक अरेंज करें, एक अनाउंसमेंट करें। निकाह एक अनाउंसमेंट है पूरे मुआशरे में, पर्टिकुलरली फैमिली में, कि आप लोग अब मियां बीवी बन रहे हैं।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं, यहाँ से सिलसिला का आगाज करेंगे, हमारे साथ रहे।

0: वेलकम बैक सामई, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया सफर हिदायत एफएम 92.6। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब हैं। आज का मौजू मौशियती मामलात निकाह और तलाक के बारे में, तो हम उसी पर बात कर रहे थे कि आप फरमाते हैं डॉक्टर साहब के लड़का लड़की अगर राजी हैं लेकिन अगर उनके माँ बाप नहीं मान रहे, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे दो खानदान का भी मिलाप है, तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ से खानदान की भारल होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखें गुजारिश ये है कि मैं एक सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ और ये होता है कि लड़के वाले या राजी नहीं है, लड़की वाले राजी नहीं है। इसमें भी भाई एक साइड तो आए ना, मतलब कोर्ट जाने की क्या जरूरत पेश आई। लड़के वाले राजी हैं तो भाई वो आए। देखें निकाह में सिर्फ एक रिलेशनशिप फिजिकल नहीं होता, खानदान बनता है। हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है। लड़की वाले नाराज हैं तो लड़के वाले तो आए उस ओकेजन में, एक निकाह करें। लड़की वालों की तरफ से क्या कोई भी राजी नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता। चले मान लिया मैंने कोई भी राजी नहीं है, तो एक ऐसी सेरेमनी करें जिसमें लड़के वाले, मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि लड़की वाले नहीं मान रहे हैं तो लड़के के वालिदैन जाके उनको मनाएं। नहीं मानते तो फिर लड़की कहे अपने वालिदैन को कि मैंने तो करनी है और मैं इस तारीख को कर रही हूँ। अच्छा, अब एक्सट्रीम सिनेरियो, लड़के वाले भी नहीं मान रहे, लड़की वाले भी नहीं मान रहे, अपनी कोशिश कर ली, और कोशिश कितनी है जाहिर है इसकी कोई हद तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन मुनासिब कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, दूसरों को कहना चाहिए, सिफारिश करनी चाहिए कि आप आके इनको समझाएं। लेकिन मैं एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को अज्यूम करता हूँ कि यार बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, तो अब दोनों लड़का और लड़की अपने वालिदैन को बताएं कि जी हम थक गए हैं आपको राजी करने की कोशिश में, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। यानी मैं उस राय को नहीं सही समझता कि वली की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं, आपने वली को समझाया, वली अनरीजनेबल हो गया।
0: वली से क्या मुराद?
1: यानी वो आमतौर पर वालिदैन या उसका सरपरस्त।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि इस्लाम में या कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस जो निकाह के इंस्टीट्यूशन में मर्द को एक दर्जा फौकियत दी गई है और कहा जाता है कि वो बहरहाल सरबराह भी है और उस ज़मन में वो बीवी की सरजनश भी कर सकता है कुछ के हैं, तो डॉक्टर साहब क्यों अल्लाह ने कहा दोनों को इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए, क्या पेश नजर था अल्लाह के? और डॉक्टर साहब वेरी एक्सक्यूज मी, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है स्पेशली फ्रॉम दी फीमेल जेंडर के जी ये तो बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है।
1: क्वेश्चनिंग करनी चाहिए उन्हें, जाहिर है कि हमारा दीन अल्लाह का पैगाम है, ये हमें समझ में आना चाहिए। समझ में उन लोगों के आएगा कि जो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को डांट के दबाना नहीं चाहिए। उसके नतीजे में होता यह है कि फिर दायरे नौजवान दीन से दूर हो जाते हैं, बात ही समझ में नहीं आती। कुछ लोग हैं जो मान लेते हैं, कुछ तबीयतें मिजाज डोसाइल होते हैं और कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं। तो गुजारिश यह है कि सवाल तो अच्छा है, उम्मीद है कि जवाब भी अच्छा होगा। देखिए गुजारिश ये है कि आपने अगर 2 घंटे के लिए पिकनिक मनाने जाना है तो शायद आपको किसी लीडर की जरूरत ही नहीं है, 2 घंटे गुजार के आगे। वैसे बाय द वे हमारे दीन में तो इसकी भी हिदायत है कि आप सफर में भी जाते हैं 3 बंदे तो एक को अमीर बना लें, 2 भी हो तो एक अमीर हो। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया में कोई इदारा, कोई गिरोह बगैर बॉस के, बगैर कप्तान के, बगैर प्राइम मिनिस्टर के, बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, बगैर जनरल के चल ही नहीं सकता। दुनिया में कोई मिसाल दे दें, मैंने तो गुजारिश की कि किसी खेल के मैदान में आप जा रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टीम लेके आप कप्तान बनाते हैं, तो आप कोई मिसाल तो पेश करें ना किसी सीरियस कोशिश की जिसमें आप ये बताएं कि देखें ये सब मिलके कर रहे हैं। हाँ, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं आप, तूफान बदतमीजी आप कर सकते हैं जिसमें क्योस होगा, थोड़ी देर के बाद झगड़ा शुरू हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब मुझे कथा कलामी मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक होता है ना या इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, मतलब एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ हैज इक्वल से, देयर इज नो वन व्हिच स्टैंड्स आउट कि आप कहते हैं वो चेयरमैन है, इफ आई एम करेक्ट। आप देखें
1: नहीं, वो चेयरमैन तो होता है सर, मतलब कोई ऐसा बोर्ड ऑफ गवर्नर तो नहीं है जिसमें चेयरमैन ही नहीं है, वो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ शादी में मियाँ बीवी मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, चेयरमैन जो है वो मर्द है। क्योंकि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब इतना सीरियस, इतना इम्पोर्टेंट इदारा वजूद में आ रहा है जितना कि खानदान होता है, आप यकीन जाने कि इससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट इदारा है ही नहीं।
0: ठीक है,
1: इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे लोग, तो फिर जाहिर है कि मुआशरे में खानदानी निजाम दरहम बरहम होगा। ये वो इदारा है कि जिसमें बच्चे पैदा होंगे, جس ادارے میں ماں باپ بوڑھے ہوں گے, یہ اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. کسی بھی ملک, یونیورسٹی, کالج, سپورٹس کی ٹیم, کلب, کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر ایک فرد کے کہ جو الٹیمیٹ ذمہ دار ہے. تو جب میاں اور بیوی مل کے ایک خاندان کا ادارہ بنائیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان میں کون ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا, تین ہی امکانات تھے نا. ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ شوہر ہے, دوسرا وہ کہتے بیوی ہے, تیسرا کہتے کہ نکاح کے وقت ٹاس کر لینا. تو لیکن یہ کہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو وہ والا مذاق ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے پیغام کی روشنی کے بغیر خاندان کو دیکھتے ہیں.
0: ڈاکٹر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نکاح کو ایز این انسٹیٹیوشن دیکھتا ہے.
1: ایبسولوٹلی,
0: یہ مطلب ہوا نا ڈاکٹر.
1: میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, ویسٹ میں آزادی کے تصور کو انہوں نے ایگزیجریٹ کیا. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹرینڈ ہے ان کے یہاں کہ وہ شادیاں کرتے ہیں, اول تو کرتے ہی نہیں, کرتے ہیں تو بچے نہیں پیدا کرتے. تو ان کے نزدیک تو یہ کوئی ایک فزیکل ریلیشن شپ کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے ایک جائز طریقے سے کیا ہے. اگر اتنا ہی ہوتا پرابلی سربراہ کی تو پھر بھی ضرورت ہوتی, لیکن چلے مان لیں کہ اتنی سیریس ضرورت نہ ہوتی, بھائی انشاءاللہ کو 9 مہینے سال بعد ایک بچہ آ جائے گا. اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی, پورا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. آپ نے کہا یار جو کرنا ہے خود ہی کرو, ہمیں نہیں پتا. نہیں, پھر آپ ایک کیوس کریٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کنفیوژن کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ٹھیک ہے, بعض خواتین یہ محسوس کرتی ہیں, وہ آپ سوال پوچھیں گے, میں اس کا بھی جواب دوں گا کہ فرض کیجئے کہ خاتون زیادہ انٹرپرائزنگ ہیں, کما رہی ہیں, پھر کیا کریں, وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن خدا تعالیٰ نے کہا کہ دو وجوہات کی بنا پر میں یہ مرد کو ذمہ داری دے رہا ہوں. یہ ذمہ داری ہے. ایک, وہ خرچ کرتا ہے, یعنی وہ ہے کہ جو خاندان کی مالی ضروریات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, تو اس لیے اسی کے پاس فائنل اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ایک مطلق العنان کوئی ڈکٹیٹر ہوگا, یعنی فائنل ڈیسیشن اس کے ہاتھ میں ہے. بورڈ آف گورننس کی طرح مشورہ ہوگا, دونوں میاں اور بیوی کنٹریبیوٹ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی, اور اس وجہ سے بھی کہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, اور ود ان بریکٹس اس میں امپلائڈ ہے بعض معاملات. ظاہر ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال میں تو کلیئر فضیلت ماں کو ہے, گھر کے باہر کے معاملات, فزیکل اسٹرینگتھ, مشکلات کو فیس کرنا, نوکری پہ جانا, بزنس کرنا, اس کے معاملے میں جنرلی اسپیکنگ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے, اس وجہ سے اس نے یہ ذمہ داری اس کو سونپی ہے. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا.
0: اوکے ڈاکٹر صاحب, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

0: हेल्प किया हो?
1: वो हम लोग हमेशा कहते थे कि जिस तरह एक फैमिली में जो सबसे पहला बच्चा होता है ना, सारे एक्सपेरिमेंट्स उसी पे किए जाते हैं. तो ये बिल्कुल वैसा ही रहा हमारे साथ 5 साल का सफर, कि वो सारे एक्सपेरिमेंट, सारा जो था जोर, सारा फोकस था हम लोगों के ऊपर, कि हम जो है पहला बैच है UCP का. और ये बिल्कुल हमारे लिए इतना ज्यादा मुफीद साबित हुआ कि जब हम फील्ड में गए और हमने फील्ड में जाके जब हमने कोर्ट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ के जो और ग्रेजुएट थे जो किसी और यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो हमने जब वहाँ पे जाके अपना आप ये कह लें कि एक्सपीरियंस किया, जब हमें मौका मिला कि हम भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट, तो वहाँ पे एक बहुत वाजिया डिफरेंस हमें देखने को मिला. एंड उसकी रीज़न जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये थी कि हमें हमेशा UCP में बहुत सारी लॉ कॉलेजेस में, मैं ये कहूंगी कि शायद इस तरह से चीजें नहीं सिखाई जाती. हमें मूट कोर्ट के एक्सपीरियंसेस दिए गए, हमें हमारा बकायदा एडवोकेसी स्किल्स का एक सेपरेट कोर्स रखा गया, जिसने मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि हमें जाके प्रैक्टिकल फील्ड में वो चैलेंजेस नहीं देखने पड़े, क्योंकि वो जो हेजिटेशन थी वो हमने मूट कोर्ट्स कर करके और हमारी एडवोकेसी स्किल्स के जो थे उसके आगे फर्दर जो है फिर हम उसमें मूट कोर्ट प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलप हुआ, और उसने बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया लीगल जो है प्रैक्टिस फील्ड में.
0: थैंक यू बादशाह साहब. आप प्लीज बताइए कि एलुमनाई एसोसिएशन क्या है और ये कब से स्टार्ट हुई है, और अगर ये स्टार्ट जैसे सुना जाता है कि 2022 में हुई थी, लेकिन FOL का बैच क्यों अभी 2025 में पहली दफा जो है वो आ रहा है?
2: अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया था सन 2022 में. तब प्रोरेक्टर थे आई बिलीव डॉक्टर नसर इकराम साहब, कि जब जो है ये एलुमनाई एसोसिएशन का सारा जो था एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया गया था. उसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा समझने का ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और UCP के एजीस के अंडर जो बहुत सारे जो हमारे ग्रेजुएट्स थे वो UCP से ग्रेजुएट हो रहे थे, लेकिन कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था कि जिसके बाद अपने आप को वो UCP के साथ या UCP के नाम के साथ जोड़े रखने का कोई तरीका नहीं मौजूद था. तो उनका विजन था कि 2022 में उन्होंने जो है पहली दफा अलुमनाई एसोसिएशन का जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए. बेसिकली ये कोई जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ये एक इलेक्शन के प्रोसीजर के तहत जो है ये वजूद में आती है. सो 2022 में जब ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, तो उस वक्त फैकल्टी ऑफ लॉ UCP का जो पहला बैच था वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्शंस अनाउंस हुए थे जुलाई 2022 में और हमारा बैच ग्रेजुएट हुआ था फॉर्मली तकरीबन अक्टूबर 2022 में, जिसकी वजह से उन इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. दूसरा मसला यहाँ पर यह था कि जो TORs थे, जो कि सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने इलेक्शंस के लिए बनाए होते हैं, उसमें यह लिखा था कि सदर की पोजीशन के लिए जो ग्रेजुएटिंग ईयर था वो एटलीस्ट 5 साल गुजर जाने चाहिए और उसके बाद कोई शख्स जो है या कोई एलुमनाई जो है वो प्रेसिडेंट सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है. और वाइस प्रेसिडेंट के रूल्स ये मौजूद थे कि उसको ग्रेजुएट हुए एटलीस्ट 3 ईयर्स हो चुके हों. अब आप समझते हैं कि 2022 के अंदर हम अभी ग्रेजुएट ही नहीं हुए थे, तो फिर वो वहां पे उसमें पार्टिसिपेट करना तो नामुमकिन था. लेकिन पिछले 2 सालों में हमारी कोशिशों से और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारे साथ तआवुन किया, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त 9 फैकल्टीज काम कर रही हैं, 8 फैकल्टीज की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो एलुमनाई बॉडी में मौजूद थी, लेकिन फैकल्टी ऑफ लॉ की जो वहां रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद नहीं थी.
0: इसकी वजह
2: ये थी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब पहले इलेक्शन हुए तो उस वक्त हम उसके अंदर ग्रेजुएट ही नहीं हुए थे. लेकिन उसमें उन्होंने एक रूल चेंज किया और रूल चेंज करके उन्होंने ये कहा कि जो न्यू फैकल्टीज बनी है, जिस तरह से फैकल्टी ऑफ लॉ है, उसके लिए उनका रूल ये था कि जो भी सीनियर मोस्ट 2 बैचेस होंगे ना ग्रेजुएट हुए, उनको अलाउ किया गया कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि आइदर प्रेसिडेंट की सीट पे या वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे. अब जिस वक्त इलेक्शन हुए उस वक्त टोटल 3 बैचेस जो थे वो फैकल्टी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट हो चुके थे, फॉल 17, 18 और 19. तो उसमें जो फॉल 17 और फॉल 18 के जो स्टूडेंट्स थे, जो एलुमनाई थे, उनको ये परमिशन मिली कि वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस साल पहली दफा जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ अपने आप को एलुमनाई एसोसिएशन में रिप्रेजेंट कर रही है. और ये भी बड़े फखर की बात है हमारे फैकल्टी के लिए कि पहली ही दफा हम जो है अलुमनाई एसोसिएशन का जो है वो पार्ट बने हैं, और पहली ही दफा हमारी फैकल्टी को जो सेंट्रल बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें मुझे जो है वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट की जो है वो वहां पे भी जो है मेरी पोजीशन है, मैं वहां पे भी रिप्रेजेंट करता हूँ पूरी अलुमनाई बॉडी को भी.
0: ये जो सामाइन अभी आपने सुना कि बाज़ शहबाज और फाइका साहिबा किस तरह से अपना रोल जो है एज अलुमनाई एसोसिएशन प्ले कर रहे हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं और इनकी जो जॉब है एक्चुअल या क्या ये रोल अपना परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज को समझेंगे. मिलते हैं एक छोटे वक्फे के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज के इस फैकल्टी और में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मियां बाजर शहबाज एंड मिस फाइका कदाफी, और आप सुन रहे हैं एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में। अब हम पूछते हैं मिस्टर बाजफ शहबाज साहब से कि आपका एज प्रेसिडेंट क्या रोल है, और हम एज स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप किस तरह से कोलैबोरेटिव रोल अदा कर सकते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में।
2: जी थैंक यू शहूक। देखें, इस सारी एसोसिएशन का जो मकसद है ना, वो टू टीयर है। पहला मकसद जो है वो इसका स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रही हैं, और दूसरा मकसद जो है वो इसका अलुमनाई है। तो हमने अपने रोल को भी उसी तरह से डिवाइड किया हुआ है, और उसमें जो है वो जो बाकी चार सेक्टर्स हैं ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी तौजीह के लिए मैं बताता चलूँ कि दरअसल यहाँ पे जो हर अलुमनाई बॉडी है, जो हर फैकल्टी है, उसके टोटल 5 मेंबर्स हैं या 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक सदर है और 4 जो हैं वो नायब सदूर हैं। उसमें से एक नायब सदर जो है वो एंगेजमेंट है, एक प्लेसमेंट, एक रिसर्च एंड इनोवेशन, और एक एंडाउमेंट है, और उसके ऊपर जो है वो एक प्रेसिडेंट है। तो बेसिकली जो ये सारा आइडिया था अलुमनाई एसोसिएशन का, उसकी कोर में ये है कि इन 4 सेक्टर्स के ऊपर यूसीपी की जो लीडरशिप है वो समझती है कि अलुमनाई जो है वो इदारे को हेल्प आउट कर सकते हैं, और उसके अंदर ये किया गया कि उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट जो है उसका सुपरवाइजरी रोल है। सो मेरे साथ जो मेरे 4 वेरी कैपेबल वीपीज जो मौजूद हैं, हम उन 4 को मिला के और मेरी मौजूदगी में हम फोकस हमारा होता है उन 4 सेक्टर्स के ऊपर। जिस तरह
1: वो 4 लोग कौन, उनको भी प्लीज आप इंट्रोड्यूस करवाएं।
2: जी बिल्कुल सर, हमारे पास जो वीपी एंगेजमेंट है वो राना हमजा है, वो भी पाइनियर बैच से है, सीनियर मोस्ट बैच से। इस वक्त वो संपत एंड संपत लॉ एसोसिएट्स में जो है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं मेनली। फिर उसके बाद वीपी प्लेसमेंट तो हमारे पास ही मौजूद है इस वक्त। वीपी एंडाउमेंट हमारे पास मौजूद है शाहिद हबीब, वो भी पाइनियर बैच से ही हैं, और वो इस वक्त अपनी पार्क 360 के नाम से टूर ट्रैवलिंग एजेंसी जो है उसको ऑपरेट करते हैं। और फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन है शारिक अहमद, जो कि इस वक्त एक वन ऑफ द रिनाउंड लॉ फर्म्स है CLM कॉर्नेलियस लेन एंड मुफ्ती, उसमें वो रिसर्च एसोसिएट हैं। सो ये इन 4 मेंबर्स की जो टीम है, ये ही सारे मेरे बाजू हैं, जिसकी वजह से जो है हम इस एसोसिएशन को चलाने के काबिल हो रहे हैं।
1: तो मिस फाइका, आप एज वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट जो है वो काम कर रही हैं, तो आपका इसके बारे में क्या इनिशिएटिव्स हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं जो भी आपने प्लान किए हैं?
3: अच्छा शहू, कैसे है बेसिकली कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं खुद जो है अपनी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो हम लोगों ने जो एक फील्ड में जा के चीज़ देखी वो ये थी कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब वो अपने लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी देखते हैं इन दी फील्ड ऑफ लॉ, क्योंकि ये बाकी फील्ड्स की तरह नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है। हमारे 2 एरियाज हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, एक साइड है कॉर्पोरेट की और एक साइड है लिटिगेशन की, जिसमें आपकी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिस बेसिकली आते हैं, और कॉर्पोरेट जो आपकी 9 to 5 ऑफिस में होती है। अब स्टूडेंट्स सब जो हैं उनके माइंड में सिर्फ जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एंड वो है जी कोर्ट में जाके वकालत करना, एंड दैट्स इट। अब इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, जैसे हर चीज के होते हैं। सो बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये 2 फर्क समझा सकें बिटवीन द लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट, ताकि वो ये चीज देख सकें दोनों एरियाज में, आइडेंटिफाई कर सकें कि वो जब यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो वो क्या करना चाहते हैं, वो उस चीज के बारे में सोचें, तय करें, डिसीजन लें। फिर देन उस हिसाब से जो हम जाहिर सी बात है उनके लिए आगे प्लान करेंगे वो ये होंगे कि हम डिफरेंट जो है लॉ फर्म्स कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबोरेट करेंगे, उनके साथ कोलेबोरेट करके हम जो है एक लॉ फेयर होता है जब हमारा जो मोस्ट बैच ग्रेजुएट हो रहा होता है हर साल, उसके लिए रखा जाता है। उसमें जो है डिफरेंट कंपनीज और फर्म्स वगैरह आती हैं जो कि बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑफर करती हैं। इंटर्नशिप जो है बेसिकली वो तो यूसीबी भी आपको ड्यूरिंग योर 8th सेमेस्टर जो है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करती है, तो उसमें भी बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प आउट तो इनिशियल स्टेज पे ही हो जाता है कि वो शायद थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन इवन अदरवाइज हमारा अब जो मेन एम है वो ये है कि हम उनको थोड़ा पहले से अर्लियर स्टेजेस के ऊपर ये डिफरेंस समझा के, और जो है उसके बाद उनको इस चीज के ऊपर मोटिवेट कर सकें कि हम उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज निकालें, वो जाएं ड्यूरिंग समर जो है वो वहां पे जाके इंटर्नशिप्स करें, और वो फिर अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके, ताकि जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो उनको पता उनका एक जो अवे आउट ऑफ अ क्लियर हो और उससे पहले उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो थ्रू दोज इंटर्नशिप्स।
1: इसमें आप स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह से ऑन बोर्ड ले रहे हैं, किस तरह से आप उनके लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं?
3: अभी जो है हम लोगों के सेशंस जो है हमने प्लान जरूर किए हैं, लेकिन अभी तक आप ये कह लें कि अभी तक कोई भी एक्शन में नहीं आया। कभी बहुत रिसेंटली अभी फरवरी में हमारी एल्यूमिनाई बॉडी जो है वो बनी है, अभी उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, फॉर्मल बॉडी जो है वो बनी है। तो अभी हमारे जो है वो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ जो है हम लोगों के सेशंस वगैरह स्टार्ट होंगे, जिसमें जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम डिफरेंट लॉ फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ, और अपनी जो हमारी ऑलरेडी ग्रेजुएट जो पंजाब लॉ कॉलेज के भी हिस्सा रह चुके हैं हमारे सीनियर्स, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके उनको लेके आएंगे, ताकि वो बच्चों को जो चैलेंजेस जो हर्डल्स उन्होंने फेस किए हैं सबसे पहले उनसे जो है उनको वो बता सके, क्योंकि बच्चों को जो एक बहुत ज्यादा चीज इस टाइम पे जरूरी होती है ना, वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि उनको हम इतना मोटिवेट कर सके कि उनको पता हो कि जब वो फील्ड में जाएंगे तो उन्होंने जाते साथ, क्योंकि फील्ड की जो आपकी रियलिटी है वो पहले किसी को नहीं पता होती, तो जब वो जाते हैं फील्ड में तो घबरा के कुछ बच्चे क्विट कर जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करना ये जरूरी है कि आपने जो है 6 महीने एटलीस्ट कुछ ना करके भी आपने अपने ये जो क्विट करने वाला आइडिया ना आपने आने नहीं देना माइंड में, आपने अपनी डेडिकेशन के साथ जो है वो 6 मंथ्स आपने सर्व करना आइदर इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट और लिटिगेशन, और देन जो है जब आपके पास आपका लाइसेंस होगा तो आपके पास हमेशा जो है वो चेंज करने की अपॉर्चुनिटी तो रहती रहती है, राइट? तो
1: इसमें आपको लगता है कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो अभी ऑनगोइंग बैच है उन्हीं को ही आपकी ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, या जो जूनियर्स हैं उनको भी एकेडमिक सपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एज एलुमनाइज आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में या वो किस वाइस प्रेसिडेंट के अंडर या वो किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे?
3: वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट जो कि मेरी सीट है उसी के अंडर आता है मोस्टली, लेकिन ऑब्वियसली एज एल्यूमिनाई बॉडी हम जो है अपने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारी पूरी टीम ही इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, और बिल्कुल जूनियर्स इस चीज में आते हैं, जूनियर्स को भी हमारा जो एक एम है, इवन जो है जो कमिंग सैटरडे है उसको हम उस डेट के ऊपर हमारा मेन एम यही है कि हम 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने हैं। मॉक इंटरव्यूज में हम उनको जो है इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो आप जब फील्ड में जाते हैं कोई लॉ फर्म है कोई कंपनी है तो वहां पे जाके बच्चे इंटरव्यू स्टेज पे बहुत ज्यादा जो है वो घबरा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में क्या सवाल आ सकता है क्या नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी उनके जो है पहले ही वो बहुत ज्यादा नर्वस हुए होते हैं कि अच्छा क्या पूछ लेंगे, ऐसा क्या पूछ लेंगे, ये सेक्शन पूछ लेंगे तो मुझे नहीं पता होगा। सो बेसिकली उसकी जो है हम उनको प्रिपरेशन करवाएंगे, तो ये हमारा जो है जो जूनियर बैचेज है उनसे स्टार्ट होगा, और जो मोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो मोस्ट रिसेंट ग्रेजुएटिंग बैच होगा उनका थोड़ा तरीकाकार होगा और होगा, उनको हम एक अच्छी सीवी ड्राफ्ट करना सिखाएंगे, उनका जो हमारा मेन फोकस होगा, उनको हम ये बताएंगे कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी कैसे हैं, क्या तरीकाकार है जिससे आप, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल अपना क्योंकि ग्रेजुएट होने वाले हैं उनको तो जॉब्स की जरूरत है, वो जॉब ढूंढनी कैसे हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनको वो अप्रोच करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने ढूंढ ली अपनी एक उनको लग रहा है कि जी ये जॉब मेरे लिए है, तो उसमें आपने एक कवर लेटर अपना कैसे अच्छा बनाना है, आपने अपनी कैसे जो है एक अच्छी सीवी बनानी है, जिसके बाद आपकी जो इंटरव्यू स्टेज है उसके लिए तो मैंने आपको बताई है कि उसके लिए तो हम उनको तैयार कर ही रहे हैं साथ साथ।
1: जी बहुत शुक्रिया सामिन, आपने अभी सुना प्रेसिडेंट एलुमनाई एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन फैकल्टी ऑफ लॉ के क्या रोल्स हैं। अब एक छोटे से वक्फे के बाद हम बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी क्या इसके अंदर ड्यूटीज हैं वो प्रेसिडेंट से पूछेंगे, और फर्दर क्या गोल्स हैं एलुमनाई एसोसिएशन के वो भी वाइस प्रेसिडेंट से पूछेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आज के फैकल्टी और में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मियां बाज़फ शहबाज एंड मिस फायका कदाफी। और आज के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर बात हो रही है एलुमनी एसोसिएशन फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में, और अभी तक अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट के बारे में जो है पूछा है। और इसके बाद मजीद जो हमारे साथ इस वक्त बाकी के तीन वाइस प्रेसिडेंट इस पैनल के मौजूद नहीं है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले शोज में तशरीफ लाएंगे, उनके क्या रोल्स हैं उनके बारे में हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे कि एज एंडाउमेंट क्या रोल है, आप कुछ स्कॉलरशिप्स प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या बाकी के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनके क्या रोल्स हैं।
2: चलें फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी वाइस प्रेसिडेंट एंडाउमेंट से। देखें एंडाउमेंट का जो ये एक हमने एक सेपरेट जो सेक्टर रखा हुआ था जो यूसीपी लीडरशिप ने जो सोचा उसको, उसके पीछे कुछ एम्स हैं और वो गोल्स जो हैं वो ये हैं कि कुछ स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं ऑल्दो, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन केसेस कि यूसीपी के वैसे तो इस वक्त जो है आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट 53% स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी यूसीपी की स्कॉलरशिप की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उन्हें किसी ना किसी हद तक, चाहे वो 25-100% स्कॉलरशिप्स जो हैं वो उनको मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही थोड़ा सा सेक्टर होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो कि हार्डशिप केसेस होते हैं, जो कि फॉर सर्टेन इंस्टेंसेस वो अपनी जो है वो फीस को कवर नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना समझने की जरूरत यह है कि अगर यूसीपी इतनी ही स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है तो फिर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसको भी अवेल नहीं कर पा रहा, मेरिट स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट का जो है वो कसूर होगा। ऐसा मैं भी सोचता था, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जब मैं पढ़ता था कि जो अपना CGPA या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मेंटेन कर पा रहा तो उसमें किसी और चीज का कसूर नहीं, उसका अपना कसूर है। लेकिन मैं गलत था। वक्त गुजरने के साथ मैंने कुछ लोगों को मिला और मैं रियलाइज किया, और यूसीपी की जो लीडरशिप है उससे भी हमने ये स्टोरी सुनी कि स्टूडेंट है बिलफर्स, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अचानक से उसके घर में कोई ऐसे क्राइसिस आ गई है कि जिसको जो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड है, और ऐसी सूरत हाल में लेट से कोई बीमारी आ गई है, उसके वालिद साहब की जो जॉब थी वो खत्म हो गई है, जो फाइनेंशियल उनके जो खुदा न ख्वास्ता किसी पेरेंट की डेथ हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में उस स्टूडेंट को जो लेट से कि 5th या 6th सेमेस्टर में है, डिग्री कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब है, उसके पास फाइनेंशियल मींस नहीं रहे अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम उस इशू को कैसे कैटर कर सकते हैं। इसी के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंडोमेंट फंड बनाया गया है कि जो कि देखता है कि जो यूसीपी की अलुमनाए हैं या जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं वो हमें उस फंड में जो है वो कुछ ना कुछ फंडिंग करें, ताकि हम उन स्टूडेंट्स को जो कि इन कैटेगरीज के ऊपर फॉल करते हों हम उनको जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। पिछले 2 सालों के अंदर जो अलुमनाए एसोसिएशन की बॉडी थी उसने 17 स्टूडेंट्स की एजुकेशन में उस तरह से हेल्प आउट की है, और पिछले 2 सालों में 2.2 मिलियन रुपीज जो थे वो हमने एंडोमेंट फंड्स के लिए इकट्ठे किए, जो कि इवेंचुअली उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए इकट्ठे हुए, हमने नहीं हमसे प्रीवियस एसोसिएशन ने। इस साल हमने अभी सिर्फ, जिस तरह से मिस फायका ने बताया आपको कि अभी हमने इस बॉडी को सिर्फ स्टार्ट ही किया है, और अभी हमारे कुछ जो है वो भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी इन एक्शन नहीं आ सके हैं। अभी इस एसोसिएशन ने सिर्फ एक ग्रैंड इफ्तार जो था फॉर अ कॉज एंडोमेंट फंड्स के लिए हमने किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने सिर्फ एक इवेंट में 1.3 मिलियन के जो हैं वो हमने प्लेज फॉर्म्स इकट्ठे किए थे, और तकरीबन ओवर 9 लाख रुपीस जो हैं वो ऑलरेडी यूसीपी के एंडोमेंट फंड में हमारी एसोसिएशन आने के बाद जो है वो आ चुके हैं। सो यही जो प्लान है इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है फैकल्टीज में, जो कि हमारे VP एंडोमेंट शाहिद हबीब हैं जो इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि किस तरह से हम अपने लॉ अलुमनाई को जो है वो इस चीज़ को रियलाइज करवाएं कि उनके जो पैसे यूसीपी के एंडोमेंट फंड में जाएंगे वो किसी एक बच्चे का जो मुस्तकबिल तारीख हो रहा है उसको जो है वो रोशन करने में कामयाब आएंगे, और ये कर्ज हसना के तौर पे होगा। कल को जब वो बच्चा फील्ड में आएगा, खुद प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो वो खुद बाकी अपने जैसे बच्चों की कंट्रीब्यूशन में उनको हेल्प आउट करेगा।
1: बहुत ही बेहतरीन कॉज है इस पोजीशन के ऊपर। इसी तरह आप एंगेजमेंट और रिसर्च के बारे में भी प्लीज बताइए।
2: अच्छा, अगली हम बात करते हैं VP एंगेजमेंट के हवाले से। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट एंगेजमेंट है ना, उसका रोल बाकी फैकल्टीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी फैकल्टी में हमें कुछ अरसे या एक महीने पहले तक लगता था कि शायद उतना रेलिवेंट नहीं है। VP एंगेजमेंट का पहले रोल समझें क्या है। देखिए रोल उसका ये है कि जो हमारे बिछड़े एलुमनाई हैं उनको ढूंढ निकाल कर इकट्ठा करना। हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त प्रेसिडेंट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर अमजद अली भट्टी साहब हैं, वो यूसीपी के ग्रेजुएट हैं सन 1991 के।
1: अच्छा,
2: अब ये देखें एक बड़ी बात है कि आज से 34 साल पहले वाला ग्रेजुएट जो है वो हमारी एलुमनाई बॉडी का जो है वो इस वक्त मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी रोल को जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूं कि हमारे तो टोटल ग्रेजुएट्स जो हैं वो 233 हैं, और अगर आप मुझसे किसी एक भी ग्रेजुएट का पूछें कि फलाना ग्रेजुएट इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि वो आजकल जो है वो किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, वो वकालत में है या नहीं है। तो हमारी जो एंगेजमेंट है ना वो ऑलरेडी फुली एक्टिव है। इसके लिए हम एक नए प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक स्पेशल शो हम आपके साथ ही करना चाहेंगे
1: जरूर इंशाल्लाह।
2: वो ये है कि हमारे बेसिकली आप समझते हैं कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ है ये एक न्यू फैकल्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पहले जो लॉ की फील्ड है उसमें लीगल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया। पंजाब लॉ कॉलेज तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जो है वो लाहौर में मुस्लिम टाउन में मौजूद था, और उसने बेशुमार ग्रेजुएट्स जो कि इस वक्त हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिनिस्टर्स सेनेटर्स पॉलिटिशियंस टॉप कंपनीज के जो हैं वो लीगल डायरेक्टर्स वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम अभी तक उनको यूसीबी के प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। और जो यूसीबी जो पंजाब लॉ कॉलेज था उसका जो है वो अलुमनाई स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हम उन लोगों को जो है वो यूसीबी के लीडरशिप के अप्रूवल के बाद हम उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करवाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वीपी एंगेजमेंट है उनका काम बहुत वसी पैमाने पर बढ़ जाएगा। देखें आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू शहूक, आज के दिन में अगर हम बात करें तो जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट इन द पोजीशन टू हेल्प आउट अदर स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेसमेंट्स और एंडोमेंट्स, बट दोज पीपल हु आर इन सच हायर पोजीशंस दे डेफिनेटली कैन हेल्प यू। सो इफ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज देम एज यू नो द पार्ट ऑफ द यूसीपी देन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ऑन देयर वे जो उनकी वजह से हमारे एलुमनाई को मिलना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाई द वीपी द रोल ऑफ वीपी एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आई वुड जस्ट एड ऑन टू वन थिंग विच फाइका मलिक हैड रिसेंटली सेड कि हमारी जो लिटिगेशन और कॉरपोरेट साइड हमारा इस आपस में जो एक कंसेंसस है वो भी इसी चीज के ऊपर है कि जो प्लेसमेंट वाली साइड है ना चूंकि यूसीबी के जो बाकी फैकल्टीज हैं दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन मेकिंग कनेक्शंस विद द कॉरपोरेट सेक्टर, तो प्लेसमेंट को ज्यादातर हम वहां पे करेंगे ताकि इन हाउस काउंसिल की जो पोजीशंस हैं हम उसको बढ़ा सकें। वीपी एंगेजमेंट दूसरा काम इसलिए भी कर रहे होंगे कि जब हम अपने उन अलुमनाई को जो कि पंजाब लॉ कॉलेज है उनको फील्ड में आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उनकी लॉ फर्म्स के साथ जो है उनकी प्लेसमेंट के अंदर जो यूसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम असिस्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह बहुत कम अरसे में हम एक बहुत जो एक वास्ट जो फील्ड है हम उसको जो है वो जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसी तरह आप रिसर्च और इनोवेशन के बारे में भी ज़रूर हमें गाइड करें, और बल्कि इसमें सेम मेरा क्वेश्चन रहेगा जिस तरह से मैंने वीपी प्लेसमेंट से भी पूछा कि आप जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या स्कोप है इस डिपार्टमेंट के अंदर।
2: बिल्कुल, देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट, और इसके अंदर जो हमारा मकसद होने वाला है वो ये है कि जो कि यूसीपी की जितनी भी आप जानते हैं कि देखें हमारे आखिरी साल में रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं और वीपी रिसर्च एंड इनोवेशन का काम टू फैक्टर्स में, एक तो ये कि फील्ड की रिसर्च और दूसरा ये है कि जो आपके स्टूडेंट्स में एकेडेमिया में जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ की रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन दो डिफरेंट चीज़ों पे है। इस शख्स का काम ये होगा कि फील्ड के अंदर नए नए एरिनाज जो हैं जहां पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प आउट उनको इंटर्नशिप्स करवाए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस में एक डिजिटल टेक फोरम है जो कि लॉ से रेलिवेंट है जिसका नाम लेग्जा है, मैं उसका लाहौर के डिवीजन का लीगल हेड भी हूं। उसका काम क्या है कि वो एक पाकिस्तान लॉ सेट की तरह एक लीगल डेटाबेस की जो है वो फोरम है और वहां पे जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई को यूज करते हुए या लॉयर्स जो हैं वो एआई को यूज करते हुए अपने जो कोई भी कीवर्ड्स पुट करेंगे और उसके मुताबिक उनको जो है वो लीगल आंसर्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट्स। अब हमारा जो टारगेट है जो वीपी रिसर्च एंड इनोवेशन की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह के ही सारे फोरम्स को ढूंढना और उनके साथ यूसीपी के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करवाना है ताकि उनको वहां पर इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स और ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो वहां पर आ सकें। इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं कि अप्रैल में ही हमारी एक इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस जो है आई बिलीव 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ में हो रही है। तो उसके अंदर हम ये करने वाले हैं कि जो लॉ फर्म्स जो कि रिसर्च के अंदर स्पेशलाइज करती हैं हम उनके साथ जो है वो कोलेबोरेट करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे कि आया वो यहाँ पे या तो रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करें अपने या फिर आके एज एन ऑडियंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करें और वो अपने एक्सपीरियंस से बाकी कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को बताएंगे कि कौन कौन से लीगल टूल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं जो कि रिसर्च में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से हमारा जो प्लान है कि जो आखिरी साल वाले स्टूडेंट्स हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके उनको हम एसोसिएट करवाएं उन स्पेशलाइज्ड फर्म्स के साथ जिस पर्टिकुलर रिसर्च के टॉपिक पे वो काम करना चाह रहे हैं, एंड शारिक बीइंग द यू नो वर्किंग एट द टॉप लॉ फर्म CLM जिसका काम ही मेनली रिसर्च का और लिटिगेशन का है. सो ही इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिलीवर यू द रिजल्ट्स वेरी सून कि किस तरह से जो है वो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको कैसे वो असिस्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह.
1: जी मिस फाइगा, अभी वाजिद साहब ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है वो जिक्र किया है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए इसका क्या बैकग्राउंड है और इसके अंदर आप लोग एज एलुमनाइज क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार, इस साल इसका क्या टॉपिक है.
3: ओके, सो बेसिकली शौक ये जो है अब हमारी इस बार 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक एविडेंस. और इसमें जो है जब हम स्टूडेंट्स थे तब से ये जो है हमारी फर्स्ट जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बीइंग स्टूडेंट्स हमने जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट ये किया था कि हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स वगैरह के थ्रू जो है रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था. और इस साल भी हमारा एम यही है कि हम डिफरेंट जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड और फोरेंसिक एविडेंस से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितने भी जो आप ये कह लें के नामवर जो है वकला हैं और जो इनके ऊपर इस फील्ड के ऊपर काम कर चुके हैं, जिनके पास इल्म है इससे रिलेटेड के ये जो है किस तरह से इसको टैकल किया जाता है, क्या इश्यूज हैं, क्या इससे रेलेवेंट जो है लॉज हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमारा मेन जो एम है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको इनवाइट करना है, उनको इनवाइट करना है ताकि जो है लोगों को इस पर सबसे क्योंकि आजकल जो है साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत जो है मेजर जो है इशू है आजकल के, जाहिर सी बात है आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक नया मोड़ ले रही है, उसकी उसके साथ ही उसके इश्यूज भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना और ये जो है एक मेन पर्पस है हमारी 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का.
1: और फाइका एंड पे मैं बिल्कुल आपसे चाहूंगा कि जो फाइनल बैच है जो इस वक्त पास आउट होने वाला है उसके लिए क्या आपकी सजेशंस हैं और आप कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आप चाहती हैं कि वो फोकस करें इस वक्त.
3: इस वक्त मेरी जो सजेशन है जो हमारा मोस्ट रीसेंट बैच जो ग्रेजुएट होने वाला है UCP से, उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो सबसे पहले तो अपने लिंक्डइन आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि प्रोफेशनल जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है टूवर्ड्स यू नो गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्टिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको के स्टूडेंट्स यूज़ करके एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह की जॉब जो है वो देखना चाह रहे हैं. उसके ऊपर अब लिंक्डइन के ऊपर अब एक CV बिल्डिंग की भी ऑप्शन हमें आती है जिसके ऊपर वो हमें प्रॉपर जो है CV अपनी बिल्ड करनी सिखाते हैं. हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमने अपना एक एकेडमिक जो है करियर में जो भी चीज़ें हमने अचीव की हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स वगैरह हमारा CGP, अगर हमने कोई रिसर्च आर्टिकल किया, अगर किसी ने कोई TA-ship की है, किसी के पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें हम उस पर जो है मैंशन करके एक अपनी अच्छी प्रोफाइल वहाँ से बिल्ड करके एक अच्छे जो है कंपनीज और डिफरेंट लॉ फॉर्म्स के साथ कनेक्ट करके वो जो स्टूडेंट्स हैं अपना एक करियर पाथ खुद भी बहुत इजीली वो उसको चूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उस पर वो खुद ग्रोथ कर सकते हैं, खुद उनकी डेवलपमेंट हो सकती है वहाँ पे. तो एक तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी. सेकेंड सजेशन जो है वो मेरी उनके लिए ये होगी कि मोस्टली हम भी जब स्टूडेंट्स थे तो हमें लगता था कि CV जितनी लेंथी हो, जितनी बड़ी हो, उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे एम्प्लॉयर को जो है ना वो हमारे में उनको होगा कि अच्छा इसने तो बड़ा काम किया हुआ है. और उसी सब में हम जो है मोस्टली उसमें ऐसी बातें लिख देते हैं जिनका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता. तो मेरी सेकंड एडवाइस या सजेशन आप ये कह लें वो उनको ये होगी कि स्टे ऑनेस्ट. अगर आपने थोड़ा भी काम किया लेकिन आपको उसके ऊपर ग्रिप है, आपको उसके ऊपर नॉलेज है, आप सिर्फ उतना लिखें. आपकी CV जो 1 pager भी है डैट इज़ मोर देन अनफ. अगर वो आप उसके आपने उसमें सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जिनका आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई बहुत बड़ी एक CV की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ से नहीं घबराना कि वो हमारे पास तो पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं होता. जो आपने काम किया है आप उसके बारे में लिखें, सच्चाई लिखें और जो है उसको आप जो है फिर आगे प्रेजेंट करें. और थर्ड यही है कि आपके इस स्टेज के ऊपर जो है आपने अपना जो फोकस है वो ज़्यादा अपने एकेडमिक करियर पे ही रखना है. ज़्यादा फील्ड की भी टेंशन नहीं लेनी है कि आप उसको छोड़ के आपके, क्योंकि अभी भी आपका जो है जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपकी बहुत जो है अहम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है अपनी ग्रिप रखें. और जो है जैसे ही आपका ये होगा तो फिर देन आपको फील्ड का जो है फील्ड के साथ साथ ही जब आप आएंगे फील्ड में तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो आपको वहीं पे आके जब आप फील्ड में पांव रखते हैं तो आपको वहाँ सीखने के लिए मिल जाती हैं. तो पहले उसकी टेंशन ना लें.
1: जी बिल्कुल ठीक. जी बादल साहब, आपसे भी मेरा सेम ही क्वेश्चन है. और इन एडिशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ ये बताइए कि स्टूडेंट्स जब फील्ड में जाएँ तो वो किस तरह से अपने आप को जो मौजूदा लॉयर्स हैं उनसे किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते.
2: देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर अंडरस्टैंड की जरूरत है ना, क्या पहले हम सुनते थे कि ग्रेजुएशन के बाद डिप्रेशन होता है, बट आई हैव टू टेल यू दैट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने किस तरह से अपने जूनियर्स को जो है वो उसमें फैसिलिटेट करने के वो उनको इतना ज़्यादा ना हो। आई हैव सीन मैनी शाइनिंग स्टूडेंट्स ओवर द लास्ट टू ईयर्स जो कि सिर्फ इस फील्ड के डिप्रेशन की वजह से छोड़ के घर बैठ गए। I don't want that to happen to any other young student now. अब इसमें होता क्या है, कर कैसे सकते हैं? देखिए, अपनी expectations के जो मेयार हैं उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएं। जब आप UCP के एक जो है वो ज़बरदस्त फैसिलिटीज से आप एक कोर्ट की लाइफ में जाते हैं, हमारे दोस्त कहते होते हैं कि UCP के ACOं से निकल के जब आप LDA सिविल कोर्ट की जो है वो छठे फ्लोर पे सीढ़ियों से जाते हैं, क्योंकि अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो आपको खदशा है कि आप उसमें बेहोश हो जाएंगे हबस से, तो फिर आपको पता चलता है कि वकालत क्या है। लेकिन उसमें आपको हिम्मत करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि फलाना शख्स जो है वो कंपनी के अंदर बैठा वो तो तनख्वाह ले रहा है और मुझे जो है वो आने जाने का फ्यूल भी नहीं मिल रहा, बिकॉज दीज आर द रियल थिंग्स। ऐसा होगा, आपने ये सोचना है कि अगर मैं इस फील्ड को अपने शुरू के 3 से 4 साल दयानतदारी से दे गया तो ये फील्ड आपको बहुत कुछ देने का जो है वो मतलब कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है। कुछ लोगों का वो जो कमाने वाला जो सर्कल है वो जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ का देर से होता है, होता ज़रूर है। एक शाम आती है, उस शाम के बाद सारे जो आपके बादल छाए होते हैं ना ज़िंदगी के वो उतर जाते हैं और पैसों की भी रेल पेल होना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें से कुछ लोग हैं जो कि इस फेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और कुछ लोग बाकी जो हैं वो आ जाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि फोकस्ड रहना, ये नहीं सोचना कि उसको उतनी फीस मिल गई और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये देखना है कि मैं क्या सीख रहा हूं और वो सीखना उसका फायदेमंद कितना है बस। और हाँ, पहले सारे आपको जो जितने टीचर्स थे हमारे वो कहते थे हमें कि आपको जो है वो सारे के सारे लिटिगेशन सीखें जी, सारे के सारे फील्ड्स को पहले सीखें 3-4-5 साल, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पेशलाइजेशन का दौर है, अपनी एक फील्ड जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें, चाहे वो एक पर्टिकुलर लॉ या एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट क्यों नहीं है, और उसमें अपने आप को इतना माहिर गिनवाएं कि उसके अलावा जो है आपके अलावा किसी और शख्स का ख्याल भी ना आए बतौर वकील, तो आप समझे कामयाब हो गए।
1: थैंक यू सो मच बादल साहब। और फाइका साहिबा, आपने आज ज्वाइन किया रेडियो पे और एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो शो आपने आपके साथ आज हुआ, और एलुमनाई एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने ज्वाइन किया। सामेईन, आज के प्रोग्राम में आपने सुना फैकल्टी ऑफ लॉ एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में, क्या उनके रोल्स हैं और किस तरह से वो इसको आगे मजीद लेकर चलेंगे, क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: आते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया,
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।